जाया राजियो परिया, सैल पत्थर में जंतो पाए, ताका रिजका के कर तरिया। मेरे माधो जी सात संग मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम बद पाया, सूखे का सहरिया रहाओ। जनन बेदा लोग सुत बनता, कोई न किसकी तरिया, से रिन संभाहे ठाकुर, काहे मन पाओ करिया। उड़े उड़ा वे सकोसा, ते पासे मारे सरिया, तिन कौन गलावे कौन जगावे, मन में सिमरन करिया। सामन दाम दास सदान, ठाकुर कर तल तरिया। जन नानक बल बस बल जाई है, तेरा अंत ना पारा वरिया। राग आसा महला चौथा, सौ पुरख क्यों अंकार। सतगुर प्रसाद सौ पुरख नजना पुनर गामा गामा पारा, सब त्याम है सब त्याम है तो जी, हर सचे सिजन हारा। सब जीत मारे जी, तू जिया का दतारा, हर दया वो संतो जी, सब दूव सारन हारा। हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू कड़कड़े अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरुष माणा, एक दाते एक बेखार ही जी, सब तेरे जोज वटांडा। तू आपे दाता आपे पूता जी, हों तुद बिन और ना जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आप बखाना। जो सेवै जो सेवै तो जी, जन नानक तिन कर बाणा। हर दया विर त्यावे तो सी, जे जन जू में सोवासी, से मूह से मूत पहे, जिन हर त्याया जी, तिन तुटे जम की फांसी। जिन निर्भव जिन हर निर्भव, त्याया जी तिन का पहो सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी, त्यारा रूप संभासी। से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, परे बेअंत बेअंता, तेरे भगत तेरे पग सलाम तो जी, अनका अनेक अनंता। तेरे अनेक दिन करे हर पूजा जी, तव तापे जावे बेअंता। तेरे अनेक पड़े बहु सिमर सा जी, कर क्रिया खट कर्म करंता। से पग से पद पले जन नानक जी, जो पावे मेरे हर भगवंता। तू आदि पुरु परंपर करता जी, तो जे उडवर न कोई। तू जो जो एको सदा, तू एको जी, तू निश्चल करता सोई। तुरे आपे पावे सोई वरते जी, तू आपे करें सोई। तुरे आपे से सब पाई जी, तुरे आपे से सब गोई। जा नान गुण गावे करते के जी, जो सबसे का जानो आसा महला चौथा। तू करता सचार मैं डासाई, जो तुम भावे सोई थी सी, जो तू दे सोई ओ पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनों कृपा करे ते नाम रतन पाया। गुरमहला दा मन मोगवाया, तो दे आप छोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझी माए, कोई बिन दूजा कोई नाए। जी जंद सब तेरा खेल, वजोग मेल विछड़िया संजोगी मेल। जिसनों तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण साधी आप खाने। जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया।
तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुर बिंदु जावर न कोए। तू कर कर वेखे जाने सोए, जना नु गुरम प्रगट होया सा। महला पहला तेत सरवले बहिले नवासा, पानी पाव तिन्ने किया पंग जो मोह पग नहीं चाले। हम देखा तैं डूबी अले, मन एक न चेस मूड मंगा, हर बिसर तेरे गुण गलिया रहाओ। ना हो जस दीनी पढ़िया, मूरख मुगदा जन्म भया। प्रणवत नानक तिनकी सरना, जैन तो ना ही विसरिया आसा। महला पंजवा पई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की है तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते ना काम, मिल सासंद पाई केवल नाम। सरंजाम लाप अवजल तरन कै, जन बिरथा जात रंग माया के रहाओ। जाप ताप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच करमा, शरण परे की राखो शर्मा। जप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच करमा, शरण परे की राखो शर्मा। पातशाही दसवीं का व्यवाज बेनती चो पई, हमरी करो हाथ दह रक्षा। पूर्ण होए चित की इच्छा, ताव चन मन रहे हमारा। ए अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुस सबे तुम काबो। आप हाथे मोहे बचावो, सुही बसे मोरो परवारा। सेव से सबे करतारा, मोर अच्छा नहीं करदे करिए। सब बैरन को आज संगरिय, पूर्ण होए हमारी आसा। तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें शाड़ कोई अवर ना त्याऊं। जो भर जाऊं तुम ते पाऊं, सेवक से का मारे तारी है। चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हादे मुझे अबरी है। मरन काल का त्रास नवरी है, पूजो सदा हमारे पच्छा। सिरिया तो जो करियो रच्छा, राह लियो मोय राखण हारे। साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बां दुष्ट के हंता। तुम हो पुरी चतरदास कंता, काल पाए ब्रह्म अवतरा। काल पाए शिव जो अवतरा, काल पाए कर्मे प्रकाशा। सगल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी सेव कियो। बेदराज ब्रह्मा ज्योतियो, जवन काल सब लोक सवारा। नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो। देव दया जशन अपजायो, आदि अंत के अवतारा। सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिसी को हमारी। ही सल प्रजा जने आप सवारी, सेव गंगो सेव गंग सो दियो। सदरन को पर मुंह बद कियो, कड़ कड़ के अंतर की जानत। पले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचरे अस्तूला। सब पर कृपा दृष कर फूला, संतन दो पाए ते दुखी। सो पाए साधन के सुखी, एक एक ही पीर विशान। कड़ कड़ के पड़ पड़ की जान, जाबुद कर करां करतारा। पर जा तर तव दे अपारा, जाबा कर कर तो कब हूं। तुम मिलत दे तर सब हूं।
जेते बन से सवतारे आपा पणी बूजो चारे तुम सब ही तेरे तनरालम जान बेपे दरे आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद नीलन आद संभ ताका मूढ़ चात पेदा जाको बेहर न पावत बेदा ताको कृपान मानत महा मूढ़ का पे न जात महादेव को कह सदा शिव निरंकार का चिन्हत न भे आप अपनी बुद्ध है जेती बणत पिन पिन तोहे तेती तुमरा लखाना जाए पसारा के बेसा प्रथम संसारा एक रूपानूप सरूपा रंग प्यो राव कहीं पूपा अंड जेर से तकीनी उत्पुज खान बहोर रच दीनी कहूँ भूरा जाहू बैठा कहूँ सिंह प्यो संगर कैठा सगरी से दिखाए चंबो आज घासरू से अंभव आब रचा मेरी तुम करो सिख अबार सिख संगरो दूजे ते उठ तो पाता सगल मलेश करो रण गाता जया तू सब सरणी परे तिनके दुष्ट दूत है मरे पुरह जन परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो काल को एक बार ते आए हैं ताके काल निट नहीं आए हैं रचा होए ताए सब काला दुष्ट हरी तरे तद काला कृपा दृतन जाए न हर हो ताके ताव तरंग में हर हो रेद सेद कर्म सब होई दोष ऐसा सके ना कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल वहां ते ताए उबारा जिन नर नाम त्यारो कहा दार दूदो तेरा खड़ग के तमें सरन तिहारी आप हा दे लियो अबारी सर्व ठोर मोहो सहाई ही दुष्ट दो ते लियो बचाई सवैया पाएंगे जब ते तुम रे तब ते को आ तरे नहीं आने राम रहीम पुराण कुरान ने कहे मत एक न माने सिमरत शास्त्र बेसब है बहु भेद कह मेघ न जाने श्री आसमान कृपा तुमरी कर मैं न क्यों सब तोय बखाने दोहेरा सगर द्वार को छाड़ के गहो द्वार हो द्वार बाहे गए की लाज आस गोविंद दास तुवार राम कली महला तीजा आनंद क्यों हंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर दा पाया सहज सेती मन वजियां वधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईया शब्द ओतांगा वो हरि के राम अंजनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ये मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर ना रहो तू मन मेरे दूसा विसारना अंगीकारो करे तेरा कार सब सवारना सब नंग लं समरा स्वामी सौ क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही करते रह करता तेरे सब किच है जे दे सो पावे सदा से सला तेरी ना मन विसावे नाम जिनके मन वसे आ वाजे शब्द घनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही करते रहे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन पुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन है वसिया जिन इशा सब हो जाइया सदा कुरबान कीता गुरु विटो जे दी है बड़े आईया कहे नानक सुनो संतो
ਸ਼ਬਦਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀ ਆ ਪੰਜ ਦੋ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਡਕ ਮਾਰੇ ਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ ਦੂਰੋ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਵਰ ਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣ ਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੁਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਮਦਾਵਣੀ ਮੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਸਤ ਸੰਧੋ ਵਿਚਾਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਿਓ ਜਿਸ ਕਾ ਸਭ ਸਾਧਾਰੋ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੂੰਚੈ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ ਇਹ ਵਸਤੀ ਨੈ ਜਾਈ ਨਿਤ ਨਿਰਾਖੁਰ ਤਾਰੋ ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ ਸਭ ਨਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਿਤੋ ਹੋਈ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓਈ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੇ ਹਰਿਆਓ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੇ ਹਰਿਆਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੋਧ ਰਹਿ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੈਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਠ ਸੁਖਮਣੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਪਾਠ ਸੁਣ ਵੈਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਐਸਾ ਦੁਖਾਂਤ ਆ ਸਾਡਾ ਕਿ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਮਣੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁਖਮਣੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਾਠ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਕਥਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੁਣਨ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਸੇਵਾ ਇਹ ਪਾਠ ਸਿੱਖਦੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਅ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਣੇ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਸਮਨ ਕਰੋ ਔਰ ਅੱਜ ਭਾਈ ਬੀਬੀ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਕਾਕਾ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਵੈਡਿੰਗ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੈ ਆਓ ਸਰਵੰਗਰੀਏ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ

कहे गुण गाऊं अष्टपादी पूरे गुर का सुनिया परदेस पार ब्रह्म निरकर पे सा सा सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरे चिंद या संत्यागो तरंग सजना की धूर मन मंग आप जोड़ बेनती करो सास अगन सागर तरो हर धन के परले हो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम खुसैज नंद सास परमानंद नरक नवार उदारो जियो गुण गोबिंद अमरा पियो चे चित नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दो पंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का आधार उत्तम स्रोत साध के बहन मलिक लाल रतन संत कमात उदार आप

सुखमणि सब तयूच ताकि शोभा बणी नानक ए गुण नाम सुखमणि सुखमणि सुखमणि। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।

बोलो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु जी क्यों ओंकार, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भौत जी सहाय वार, श्री भौत जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमरकाय। गुरु नानक लई त्याए फिरंगत गुर ते अमरदास, रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबिंदो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जे डिठै सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरै कर नौ निधियावे ताए, सब थाई होई सहाय दसवें पातशाह। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, ओ सब थाई होई सहाय। दसों पातशाहियों की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पवित्र पाठ दे दर दे अंतर खालसा सब। बोलो जी वाहे। पंजा प्यारिया चौं सब जादिया, चालिया मुक्तिया अठिया जपिया तपिया, शाही सिंघा सिंघणिया जिन नाम जपया, वंड छकिया देख चलाई तेग वाई, देख केंडट कीता तिना गुरमुख प्यारे सियारिया की कमाई का ध्यान तर खालसा सब। बोलो जी वाह। जिन्हां सिंघा सिंघणिया धर्मे सी दिते, बांध बांध कटवाए चरखड़िया ते चढ़े आरिया, नाल तन चरवाए उबलदिया तेगा विचों बाले के खोपरिया लुहाइया, गुरुद्वारे की सेवा संभाल ली कुरबानियां कीतियां, तेरे भाणे नूं मिठा करके मनिया, असहे ते कह असहार दे शहीदो सिकिद के सांसवासा संग नभाई तरमनी हारिया, तिना समूह शहीद सिंघा सिंघणिया की कमाई का ध्यान तर खालसा सब। बोलो जी वाह। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारिया जी का ध्यान दर खालसा सब। बोलो जी वाहे। प्रथम खालसे जी की अरदास है जी, सरबत खालसे जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चेतावे चेतावन का सदका सर्व सुख होवे, जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया दे ते फतेह बिरद की पैज। पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय, खालसे जी के बोल बाले खालसे सब। बोलो जी वाहे। सिखा नु सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, वसाह दान, भरोसा दान, दाना सरदान, नाम दान, श्री अमृतसर साहब जी के इशनान, चौंकियां चढ़े बुंगे, जुगो जुग अटल धर्म का जयकार। खालसे जी के बोल बाले खालसे सब। बोलो जी वाहे। सिखा दा मन नीवा मत उची मादे राखे, आप अकाल पुरख अंतर जामी गुरु गरीब निवास जी पातशाह पन दे सदा सहाय दार पिता जी। हो श्री ननकाणा साहब और गुरुद्वारे गुरुधामा दे जिन्हों तो पंथ नूं छोड़िया गया, सेवा संभाल अपने खालसा जी नूं बख्शो जी। निमाणिया दे माण, नताणिया दे ताण, ने उल्टिया दे ओणे, आसर दे आसरे धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पातशाह जी, आविदा कोटान कोट शुकर, आविदे पार बख्श रहमत कृपा दा सदका सरबत दे भले लई। पंथ की चढ़ती कला समूह संगतां दी सुख शांति वास्ते, बीबी कुलजीत कौर दे समूह परिवार की चढ़ती कला लई आप दे हजूर सोधर दे शामा दे दीवान सजे सजे दीवाना विशब चौंकी कीर्तन सोधर रह साहब दे पाठ होए ने उपरंदा ते आप ने कृपा की। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर कराए, दरों करौंड साहब बीबी कुलजीत कौर कड़गस अते उन्हां दे सपुत्र भाई गुरमेल सिंह जसविंदर कौर समूह परिवार नूं दाता जी आप ने कि सुखमणी साहब के पाठ कीर्तन और गुरु के लंगरां की सेवा बख्शिश की है। परिवार वालों बख्शियां दातां दा शुकराना करदे परिवार की सुख शांति तंदुरुस्ती चढ़ती कला कारोबारां दी बरकतां गुरसिखी जीवन नाम की दात की जाचना करदे होया अते काका जगरूप सिंह बच्ची संदीप कौर के विआह की सालगिरह मनाउंदे होया अते आप ने कृपा की बच्ची संदीप कौर नूं दाते डॉक्टर की डिग्री बख्श की है। बच्चों की चढ़ती कला लई शुकराने वजों परिवार वालों सुखमणी साहब के पाठ आरंभ किए गए, संपूर्णता तो बाद दाता जी आप दे चरणों विच अरदास बेनती है। मेहर करनी रहमत करनी दाता जी, परिवार के सिर ते मेहर भरिया थकना, परिवार में सुख वरतौना, बच्चों के सिर ते मेहर भरिया थकना, तंदुरुस्तियां चढ़दियां कला गुरसिखी जीवन बख्शना, परिवार के कारोबार की बरकतां बख्शिश करनियां, सुभाग जोड़ी जगरूप सिंह संदीप कौर के सिर ते मेहर भरिया थकना, दोनों बच्चों प्रेम प्यार अतवाग दी दाता गृहस्थी जीवन हर प्रकार के सुख प्रदान करने वाले आने वाले समय चढ़दी कला बख्शनिया, दोनों नूं दाता जी मेहर भरिया थ रखे खुशियां भरिया जीवन बख्श के निहाल करना। बच्ची संदीप कौर के सिर ते मेहर भरिया थकना, बच्ची नूं दाता जी अपने मिशन में कामयाबी बख्शनी, आने वाले समय दाता जी आप दी लोग आप दी संगतां दा
ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਮ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਬਖਸ਼ੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਅੰਗ ਸੰਸਾ ਯੋਗੇ ਵਰਤਣਾ, ਹਰ ਮਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸੁੰਦਰ ਮਾਲੇ, ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਲੰਗਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਥਾਏ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਯੋਗ ਕੇ ਵਰਤਣਾ ਜੋ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁ ਪਿਆਰੇ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤਿਲ ਹੁਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪਵਾਨੀ ਸੇਵਾ ਥਾਏ ਪਾਉਣੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਤਰਕਣਾ, ਸਰਬੱਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਵਰਤਾਉਣਾ। ਭਾਈ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡੁਲੈਚ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਦਾਤ, ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਤਰਕਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਵਰਤਾਉਣਾ, ਹਰਮਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਹਰਮਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਗਾ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੇ ਸੰਗ ਦੇ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਖੁਆ ਰੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ।

सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। हम अवगुण परे एक गुण नाहीं, अमृत छाट बिखै बिख खाई। माया मोह परम पै फूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनयो और संगत, ते मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणाई। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। तनासरी महला चौथा। इच्छा पूरक सर्ब सुख दाता हर, जाके

अपने दास को दे वटाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की या पात रखे, ताकि गात मत को ताकि गात मित को ना लाख। प्रभु के सेवक को ना पहुँचे, प्रभु के सेवक उजते उचे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दादेश प्रगटाया। नीकी कीरी मैं कल रख, पसम करे लश्कर कोट लाख, जिसका सांस न काटते आप, ताको राख दे कर हाथ। मानस जतन कर्तव्य पांत, तिसके कर्तव्य वृथे जात, मारे ना रखे अवर न कोए, सर्ब जिया का रखा सोए।

प्रजपिये पी अमृते मंत्रपिये नाम रतन जिन गुर मुख पाया तिस किसी अवर नाहि दृष्ट आया। नाम तान नामो रूप रंग नामो सुख हर नाम का संग।

सोवत नाम को नानक जन कैस दुकाम। बोलो जस जे बाजन रात, प्रभ अपने जन किन्नी दात। करें भगत आत्म कह चाहे, प्रभ अपने सिंह रहे समाये। जो हुआ होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पहचाने। तिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण के एक न जानो।

अडब झूठ पासारी, जिन दिए तस बुझे ना बिगाना, नाम बिसार नानक पछताना, गुर की मात तू ले आने, भगत बिना बो डूबे सियाने। हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत, चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किल बिख जाहे। आप जपाओ अवरा नाम जपावो, सुनत कहत रहत गत पावो, सार भूत सातर को नाओ, सह सुभाए नानक गुण गाओ। गुण गावत तेरी उतर समैल, बिन सजाए हो मैं बिकफैल। होए अचिंत बसै सुख नाल, सास ग्रास हर नाम संभाल, छाड़ सियानब सगली मना, साध संग पावे सच तना। हर पूंजी संच करो व्यवहार, इहां सुख दरगा जयकार, सर्व निरंतर एको देख, को नानक जाके मस्तक लेख। एको जप एको साला, एक सिमर एको मन आहे, किसके गुण गाओ अनंत, मंत्र जाप एक भगवंत। एको एक एक हर आप, पूर्ण पूरे उप्रप्याप, अनक विस्तार एक ते पहे, एक राध परास्त गए। मान तन अंतर एक प्रभराता, गुर प्रसाद नानक एक जाता, सलोक फिरत फिरत प्रभे आया, परिया तो शरण आए। नानक की प्रभ बेनती, अपनी भक्ति लाए अष्टपदी। जाचक जान जाचे प्रभ दान, कर कृपा देव हर नाम, साध जना की मांगो तूर, पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर। सदा सदा प्रभ के गुण गावो, सास सास प्रभ तुम्हें ते आवो। चरण कमल स्यों लागे प्रीत, भगत करो प्रभु की नित नीत, एक कोट को आधार, नानक मांगे नाम प्रभ सार। प्रभु की दृष्ट महा सुख होए, हर रस पावे बिरला कोए, जिन चाख्या से जन तृप्ताने, पूर्ण पुरख नहीं डोलाने। सुपार परे प्रेम रस रंग, उपजे चाहो साध कै संग, परे शरणयान सब त्याग, अंतर प्रकाश अन दिन लिवलाग। बड भागे जपया प्रभ सोए, नानक नाम रते सुख होए, सेवक की मनसा पूरी पई, सतगुर ते निर्मल मत लई। जान को प्रभ होयो दयाल, सेवक की नोस दा निहाल, बंधन काट मुक्त जन पया, जन्म मरण दुख भ्रम गया। ऐश पुन्ने श्रद्धा सब पूरी, रावर या सतसंग हजूरी, जिसका साथ तन लिया मिलाए, नानक भगती नाम समाए। सो क्यों बिसरे जे काल ना पाने, सो क्यों बिसरे जे की आ जाने, सो क्यों बिसरे जिन सब किश दिया, सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया, सो क्यों बिसरे जे अगन में रखे, गुर प्रसाद को बिरला लखे। सो क्यों बिसरे जे बेखते काढ़े, जन्म जन्म का टूटा गंढ है, गुरपुरे तते बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो ए काम, आन त्याग जपो हर नाम।
सिमर सिमर सिमर सुख पावो, आप जपो अपना नाम जपावो। भगत पाए तरिये संसार, बिन भगति तन हो सीसार। सर्व कल्याण सुख नित नाम, बूढ़त जात पाए विश्राम। सगल दुख काहो वतनास, नानक नाम जपो गुणतास।

चरण तोये भगत जना कै मंतन रंग बिरला को पावे संग एक बस्त दीजे करमया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही ना जाए नानक रहया सर्ब समाए प्राप बख्शांद दीन दयाल भगत विछल सदा कृपाल।

जो जो जपै सो होए पुनीत, भगत पाए लावे मन हीत। हम निर्गुणी आरणी चे अजान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान। सर्व वैकुंठ मुकत मोख पाए, एक निमख हर के गुण गाए। अनक राज भोग बड़े आई, हर के नाम की कथा मन पाए। बहु भोजन का प्रसंगीत, रसना जपती हर हर नीत। पली सो करनी शोभा तनवंत, हृदय बसे पूर्ण गुरमंत। साध संग प्रभु दे निवास, सर्व सुख नानक प्रकाश श्लोक। सार गुण निर्गुण रंकार, शून समाधि आप। अपन किया नानका, आपे ही फिर जाप अष्टपदी। जब अकार कछ ना दृष्टिता, पाप पुन तब कहते होता। जब तारी अपन शून समाध, तब बैर विरोध के संग कमात। जब इसका वर्ण चिन्ह जापत, तब हर सो को कसे व्यापत। जब अपने आप या पार ब्रह्म, तब मोह का किसोवत परम। आपन खेल आप वर्ति जा, नान करने हार ना दूजा। जब होवत प्रभु केवल तनि, तब बंद मुक्त कहु किस कहु गनी। जब एक हर अगा में अपार, तब नरक सुर को कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभु सह सुभाए, तब शिव शक्त कहो के तठाए। जब आपे आपे अपनी जोत तरे, तब कवन निडर कवन कात डरे। अपने चलते आप करने हार, नानक ठाकुर अगा में अपार। अविनाशी सुखी अपने आसन, तय जन्म मरण को कहा विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभु सोए, तब जम की त्रास को के सोए। जब अभिगत अगोचर प्रभु का, तब चित्र गुप्त कस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे, तब कौन छुट्टे कौन बंधन बांधे। आपने आप ही अचरजा, नानक आपन रूप आप ही उपरजा। जय निर्मल पुरख पुरख पातोता, तै बिन मैल कहो क्या तोता। जहाँ निरंजन निरंकार निर्वाण, तै कौन को मान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश, तै षड़ शित्र लगत कहो कीस। जहाँ जोत स्वरूपी जोत संग समावे, तैं किसे भूक मंत्र बतावे। करण करावण करण हार, नानक करते का नाय शुमार। जब अपने शुभाय अपन संग बनाई, तब कमन माए बाप मित्र सुत पाई। जय सर्ब कलाया पे परबीन, तैं वेद कतेब कहाँ कूचीन। जब अपने आप उर थारे, तो शगन अपशगन कहाँ बिचारे। जहे अपनी ऊचे अपने आप नेरा, तै कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपनी गत जानो आप। जय शाला शेर अपेद समाया, ऊआ किसे बेआपत माया। आपस कवा पे आदेश, ते गुण का नाहीं प्रवेश। जय एक एक एक भगवंता, तै कौन अचिंत किस लागे चिंता। जय अपने आप या पतियारा, तै कौन कथे कौन सुनने हारा।

पूरन पूर रहे दयाल, सब ऊपर होवत कृपाल। अपने कर्तव्य जाने आप, अंतर जा मेरे हो ब्याप। प्रतपाल जीअन बपात, जो जो रचियो सोत से त्यात। जिस पावे सिले मिलाए, भगत करें हर के गुण गाए। माने अंतर विश्वास कर मान्या, करण हार नानक इक जान्या। जन लागा हारे कह नाए, तिसकी आसना बिरथी जाए। सेवक को सेवा बने आए, हुकम बूझ परम पद पाए। इस ते ऊपर नहीं विचार, जाके मन बस्या निरंकार।

मेले साध संग मिल करो आनंद, गुण गावो पर परमानंद। राम नाम तत करो विचार, दुर्लभ देह का करो उधार। अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरण काए सुवाओ। आठ पैर प्रपेखो नेरा, मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा। सोने उपदेश हृदय बसावो, मन इच्छे नानक फल पावो। हलत पल दे लियो सवार, राम नाम अंतर उर तार।

सच व्यापार करो व्यापारी, तरका नभै खेप तुम्हारी, ये काटे कर खो मन माहे, नानक भौर न आवे जाहे। तिस ते दूर कहाँ को जाए, उबरे राखण हार ते आए, निरपौ जपै सकल पौ मिटै, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै। जिस प्रभ राखै तिस नाहीं दुख, नाम जपत मन होवत सुख, चिंता जाय मिटे अंकार, तिस जन को कोई न पहुँचन हार। सेरी उपर ठाडा गुरसूरा, नानक ताके कार्ज पूरा, मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट, दर्शन पेखत उदर श्रिष्ट। चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप, तान सेवा सेवक प्रवान, यंत्र जामी पुरख प्रदान। जिस मन बसै सो होत निहाल, ताके निकट ने आवत काल, अमर पै अमरा पद पाया, साध संग नानक कर त्याया। श्लोक ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत पेटिया, नानक मन प्रकाश अष्टपदी। संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा, सगल समग्री एक कस कट माहे, अनक रंग नाना दृष्टाएं।

चरजमिस्माद तेन देखे ऐसे आप दिखाए, नानक ते जन सो जी पाए, सो अंतर सो बारे अनंत, कट कट ब्यापरिया भगवंत। तरण माहे आकाश पयाल, सर्ब लोक पूर्ण प्रतपाल, बंतन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म। पौन पानी बसंतर माहे, चार कुंड तत् से समाए, तिस्ते पिन नहीं को ठाऊं, गुरु प्रसाद नानक सुख पाऊं। वेद पुराण सिमृत मैं देख, ससियर सूर नक्षत्र मैं एक, बाणी प्रभु की सबको बोले, आपे डोल न कबहू डोले। सर्ब कला कर खेले खेल, मोल न पाये गुण अमोल, सर्ब ज्योत में जाकी ज्योत, तार रहे हो स्वामी ओत पोत। गुर प्रसाद परम का नास, नानक तन्मय विश्वास, संत जना का पेखण सब ब्रह्म, संत जना के हृदय सब धर्म। संत जना सुने शुभ बचन, सर्ब आपी राम संगरचन, जिन जाता की ये रहत, सत बचन साधु सब कहत। जो जो होए सोई सुख मने, करण करावण हार प्रभ जाने, अंतर बसे बार पियो ही, नानक दर्शन देख समोही। आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत्पत, तिस भावे ता करे विस्तार, तिस भावे ता एक अंकार। अनेक कला लखी न जाए, जिस भावे तिसले मिलाए, कवन निकट कवन कहिए दूर, आपे आपे आप भरपूर। आप

रचियो नाउ दो इक दुर साजिया करिया सि निठो चाओ दाता करताप तू तुस देवे करे पसाओ तू जानो सब सह दिल से कवाओ करिया सि निठो चाओ करिया सि

पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ वैष्णहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पैननहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप अपार कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए खार कूड़ कूड़े ने हो लगा विचरिया करतार किस नल की जय दोस्ती सब जग चलनहार कूड़ मिठा कूड़ माख्यों कूड़ डोबैपुर नानक बखाणे बेनती।

0: जानुष्कताम ना हुई, तू करता करना मैं नहीं जाहु करी ना हुई, मलेहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख लाऊ, जात मैं जो जोत मैं जाता अकल कला भरपूर रहा, तू सच्चा साहिब शिव सवाले जिन की तीसो पार पिया, कहो नानक करते किया बाता जो कुछ करना सो कर रहा महला दूजा।
1: जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत सर्व शब्दं एक शब्दं।

0: सुचे अगे रखिन कोई ना पिट्यो जाए। सुचे हो के जे व्या लगा प्रंस लोक, को हती जाए सुटिया किसे लगा दो। आन देवता पानी देवता बैसंतर देवता लून, पंजवा पाया किरता हुआ पाप वित। पापी सुतन गड़िया थुका पाया तित, जित मुख नाम ना उच्चरे बिना वैरस खाए। नानके वे जानिए तित मुख थुका पाई महला पहला।
1: भांड जमिए भांड निमिए भांड मंगण वे आहो, पंडो हो वे दोस्ती पंडो चले राहू।

0: दात आपस ते जो पाई है नानक साक्रमात साहिब तुठै जो मिले महला दूजा।
1: एह कनेही चाकरी जित पौ खसम न जाए नानक सेव कांडिये जिस

आप कराए साक्ती फिर आप कराए मार। एक ना गली जंजीरिया एक तुरी चढ़े बिस्यार। आप कराए करे आप हो कह सो करी पुकार। नानक करना जिन किया।

उचेते ऊचा सगल समगरी तुमर सूतर तुमते हो सु तुमरी गत मित तुम्हें नानक दास। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती समर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याइये जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै करनौ निदावे ताए। सब थाई होए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया। देग चलाई तेग वाही देख के अंडिठ कीता तिना प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी। जिन्ना सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े। आरियां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सुआसां नाल निभाई। तिना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेते आवे। चेते आवन का सदका सर्ब सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छिया रियायत। देग तेग फते बिरध की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सरजी दे इशनान चौकियां झंडे बंगे जुगो जोगे अटल। धर्म का जयकार खालसा जी बोलो जी। सिखा दा मनीवा मत उची मादा रखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो। श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणियां दे माण। नितानियां दे ताण नियोटियां दी ओट सच्चे पिता वाहिगुरु आप जी दे पावन पवित्र चरण कमलां पास। अरदास बेनती जोदड़ी प्रार्थना है पातशाह जी आप जी दे हजूर अमृत वेले नूं मुख रखदिआं दीवान सजाए गए। सजे हुए दीवाना अंदर लड़ी वार चल रहे श्री सहज पाठ तों उपरंत शब्द चौंकी आसा की वार दे कीर्तन। आनंद साहिब छे पौड़ियां दी अरदास इन्ने अरसे विच आप जी दे बच्चिआं पासों बाणी पढ़दिआं सुणदिआं सेवा करदिआं होइयां बेअंत भुल्लां चुक्कां दी खिमा अगां तों समत बख्शिश करनी समूह संगत दी अरदास बेनती प्रवान करनी। कदम कदम लेखे विच लाउणा आप जी दीआं बख्शियां दातां दे विच्चों तिल फुल भेटावां दर ते प्रवान करनियां। दरों करों गुरसिखी जीवन नाम दान दी दात अमृत वेले दा जागणा नितनेम दी दात बख्शिश करनी। मनोकामनावां शुभ भावनावां गुरमत अनुसार पूरियां करनियां देसां परदेसां विच विचरदिआं बच्चिआं दे सिर ते मेहरां भरिआ हथ रखणा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तों बचा के सत संतोख दया धर्म धीरज दीआं दातां बाणी बाणे नाल गुरु दर दे नाल प्रेम प्यार बख्शिश करना पातशाह जीओ इन्हां समयां नूं मुख रखदिआं आप जी दे हजूर समूह साध संगत जी वल्लों कड़ा प्रसाद दी देग हाजर है दर प्रवान होवे। प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शिश करनी कृपा करो।
ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ, ਸਰਬਾਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ।

करत बेकार दो कर चारत। राम रतन रिद तिल नहीं थारत। भरण पोखण संग औद बिहानी।

0: समर्थ अगोचर स्वामी उधार नानक प्रभ अंतर जामी शरण समर्थ अगोचर स्वामी उधार नानक प्रभ अंतर जामी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतक्रांति पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे गुरु सवारे अति सत्कार योग सत्संगी जनो वटभागिया जिथे आप जिया ने लड़ीवार चल रहे श्री सहज पाठ तो उपरंत शब्द चौंकी आसा की वार दे कीर्तन सरवण कीते ने सरबादे पले की अरदास तो उपरंत सतगुरां ने जो पावन मुख वाग की दात बख्शिश कीती है पवित्र उपदेश आप संगत ने बड़े प्रेम अदब सत्कार सहित सरवण कीते हैं। गुरद्वारा साहब विखे अज नगर अखाड़ा दी संगतां वालों भाई रणजोत सिंह हंस परिवार ते भाई कुलवंत सिंह गिल परिवारां वालों तीन श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ होणगे जिन्हां दे भोग एतवार सवेरे 9:30 बजे पैणगे उपरंत हफ्तावारी दीवान सजणगे। परिवारां अते नगर निवासियां वालों बेनती है आप जी ने तिन्ने दिन दर्शन देण दी कृपालता करनी जी। समां है पावन मुख वाग दी कथा विचार दा सेवा निभाउणगे सत्कारयोग भाई गुरशरण सिंह जी चीमा और तिना पासों पावन मुख वाक की कथा विचार सरवण करिए जी। भुला चुका की खिमा आप संगत का धनवाद वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम वाहेगुरु साहिब जीओ जेता समुंद सागर नीर भरिया

तित लागे कंचुआ फल मोती, कवन सो घर जो निरपौ कहिए, पौ भज जाए अपै हुए रही है। कवन सो घर जो निरपौ कहिए, पौ भज जाए अपै हुए रही है। रहाओ तट तीर्थ नहीं मन पतिया, ए चार अचार रहे उर जाए। पाप पुन दोए एक समान, निज घर पारस तजो गुणयान। कबीर निर्गुण नाम नरोस,

प्रेम प्यार जिन्नी आप पछाणिया घर मैं महल सताए सच्चे सेती रत्या सच्चो पल्ले पाए त्रै पवन जो प्रभ जानिए साचो साचे नाए सा तन खरी सुहामनी जिन पिर जाता संग मैली मैल बलाइए सो पिर रावी रंग सच सुहागन सापली पिर मोही गुण संग पूली पूली थल चढ़ा थल चढ़ू कर जाओ बन मैं पूली जे फिरा बिन गुर बूझ न पाओ नावो पूली जे फिरा फिर आवो जाओ पूछो जाए पदाऊंगा जे चले चाकर होए राजन जाने अपना दर कर ठाक न होए नानक एक रब रिया दूजा अवर न कोए श्री राग महला पहला गुरते निर्मल जानिए निर्मल दे शरीर निर्मल सचो मन वसे जो जाने अब पीर सहजे ते सुख अगलो ना लागे जम तीर भाई रे मैल ना ही निर्मल जाए जल जाए निर्मल सचा एक तू होर मैल परी सब जाए रहो हर का मंदिर सोना किया करने हार रब सस दीप अनूप जोत त्रै पवन जोत अपार हाट पटन गट गोट कोटड़ी सच सौदा व्यापार ज्ञान अंजन पै पंजना देख निरंजन पाए गुप्त प्रगट सब जानिए जे मन राखे ठाए ऐसा सतगुर जे मिले ता सहजे लय मलाए कस कस वट्टी लाइए परखे हित चित लाए खोटे ठोर न पाए न खरे खजाने पाए आसियां दे सादूर कर यों मल जाए समाए सुख को मांगे सब दुख को न मांगे कोई सुखे को अदुख अगला मनमुख बूझ न कोई सुख दुख सम कर जानिए शब्द भेद सुख होए वेद पुकारे वाचियां बाणी ब्रह्म व्यास मुन जन सेवक साध्या नाम रते गुणदास सच रते से जिन गए हो सद बलिहारे जाओ चौ जुग मेले मैल परे जिन मुख नाम न होए भगती पाए विहुनिया मुँह काला पत खोए जिन्नी नाम विसारिया गन मुठी रोए खोजत खोजत पाया डर कर मिले मिलाए आप पिछाने कर वसे होमे तिशना जाए नानक निर्मल उजले जो राते हर नाए श्री राग महला पहला सुन मन भूले बावरे गुर की चरनी लाग हर जप नाम त्याए तू जम डर पे दुख पाग दुख कनो दोहागनी क्यों थिर रहे सुहाग पाई रे अवर नाई मैं थाऊं मैं तन नाम रदान है गुर दिया बल जाओ रहाओ गुरमत पत शबाश तिसके संग मिलाओ जिस बिन कड़ी न जीवो बिना में मर जाओ मैं अंदले नाम न विसरे टेक टिकी कर जाओ गुरु जिना का अंदला चेले ना ही टाओ बिन सतगुर नाव न पाइये बिन नामे क्यों सुहाओ आए गया पिछतावना जो सुनिए कर काओ बिन नामे दुख दोहरी जो कलर की पीत तब लग मैल न पाइये जब लग साच न चीत शब्द रपे कर पाइये निर्बानी पतनीत हों गुर पुछो अपने गुर पूछ कार कमाओ शब्द सलाही मन वसे हों में दुख जल जाओ सहजे हो मिलावड़ा साचे साच मिलाओ शब्द रते से निर्मले तज काम क्रोध हंकार नाम सलान सदा सदा हर राखे उतार सो क्यों मनो वसारी है सब जिया का आधार शब्द मरे सो मर रहे फिर मरे न दूजी वार शब्दे ही ते पाइये हर नामे लगे प्यार बिन शब्दे जग भूला फिरे मर जन्मे वारो वार सब सलाहे आपको वडो वडेरी होए गुर बिन आप न चीनिए कहे सुने क्या होए नानक शब्द पछाणिए होमे करे न कोई श्री राग महला पहला बिन पिर तन संगारी है जो बन बाद खुवार नामा ने सुख छेजड़ी बिन पिर बाद शिंगार दुख कनो दुहागनी ना कर शिज पतार मन रे राम जपो सुख होए बिन गुर प्रेम न पाइये शब्द मिले रंग होए रहाओ गुर सेवा सुख पाइये हर वर सहज सिंगार सच माने पिर छेजड़ी गूढ़ा हित प्यार गुरमुख जान सजानिए गुर मेली गुणचार सच मिलो वर कामनी पिर मोही रंग लाए मन तन सच विगसिया कीमत कह न जाए हर वार कर सुहागनी निर्मल साचे नाए मन मै मनुआ जे मरे ता पिर रावे नार कत धागे गल मिले गल मोतियन का हार संतां सभा सुख उपजे
ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਉਪਜੇ ਖਿਨ ਖਪੇ ਖਿਨਿਆ।

हर नाम जिना रास रहाओ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग की वार महला चौथा सलोकां नाल सलोक महला तीजा। रागां वे श्री राग है जे सच धरे प्यार, सदा हर सच मन वसे निचल मत अपार। रतन अमोलक पाया गुर का शब्द विचार, जेबा सच्ची मन सच्चा सच्चा शरीर अकार। नानक सच्चे सतगुर सेविए सदा सच व्यापार। महला तीजा होर बिरहा सब तात है, सब लग साहिब प्रीत न होए। यो मन माया मोया वेखन सुन न होए, सह देखे बिन प्रीत न उपजे अंधा क्या करे। नानक जिन्नी अखां लीतियां सोई सच्चा दे पौड़ी। हर इको करता इक इको दिवान हर, हर इक से दाहे अमरे इको हर चेत धर। हर तिस बिन कोई नाए डर भरम पौ दूर कर। हर तिसे न सलाह जे तुझे रखे बार कर। हर जिसनु होए दया सो हर जप पौ बिखम तर। सलोक महला पहला दाती साहेब संधियां, क्या चले तिस नाल एक जगंदे नाल ना सुत्या दे उठाल। महला पहला सिदक सबूरी साधका, सबर तो सम लायका। दीदार पूरे पाए सा थाओ नाई खाए कर पौड़ी। सब आपे तो दे उपाय के अपकार लाई, तो दे आपे वेख विकसा अपनी वडियाई। हर तुदो बार किश नहीं तू सच्चा साई, तू आपे आप वर्तदा सबनी ही ताई। हर तिसे ते आवो संत जनो जो लय छाई। सलोक महला पहला फकड़ जाती फकड़ नाओ, सबना जिया इको छाओ। आपो जे को भला कहावे नानक ता पर जापे, ता पत लिखे पाए। महला दूजा जिस प्यारे सोने हो तिस आगे मर चलिए, त्रे जीवन संसार ताके पाछे जीवना। पौड़ी तदे आपे धरती साजिए, चंद सूरज दोए दीवे। दस चार हट तो साजिया व्यापार करीवे, इकना नू हर लाभ दे जो गर्म खतीवे। तिन जमकाल ना व्यापे जिन सच अमृत पीवे, वे आप छुटे परिवार से तिन पिछे सब जगत छुटीवे। सलोक महला पहला कुदरत करके वसिया सोए, वक्त विचारों से बंदा होए। कुदरत है कीमत नहीं पाए, जा कीमत पाए तो कहीं न जाए। सरे सरियत करे विचार, बिन बूझे कैसे पवे पार। सिदक करे जिसका मन कर मकसूद, जय तेर देखा तै फिर मौजूद। महला तीजा गुर सभा एव न पावी, न नेड़े न दूर। नानक सतगुर तामले जा मन रहे हदूर। पौड़ी सप्त दीप सप्त सागरा, नवखंड चार वेद दस अष्ट पुराना। सर हर सभना विच तू वरतदा हर सभना पाना। सब तुझे त्यावे जी जंत हर सारग पाना। जो गुरमुख हर इरादे त्यों हो कुरबाना, तू आपे आप वरतदा कर चोज वडाना। सलोक महला तीजा कलो मजासनी क्या सदाइए, हृदय ही लिख ले हो। सदा साहेब के रंग रहे कभू न टूट सने हो। कलो मजासनी जाय सी लिखिया पी ना ले जाए, नानक साहेब प्रीत न जाय सी जो सुर छोड़ी सच्चे पाए। महला तीजा नदरी आमदा नाल न चली, वेखो को वो पाए। सतगुर सच दड़ाया सच रहो लिवलाए, नानक शब्दी सच है करमी पल्ले पाए। पौड़ी हर अंदर बार एक तू, तू जाने भेत। जो कीजे सो हर जानदा मेरे मन हर चेत। सो डरे जे पाप कमावदा धर्मी विकसेत, तू सच्चा आप न्याओ सच त डरिए केत। जिन्ना नानक सच पछाणिया से सच रलेत। सलोक महला तीजा कलम जलो सन मसामनी, कागत पी जल जाओ लिखन वाला जल बलो। जल लिखिया दूजा पाओ, नानक पूर्व लिखिया कमावना अवर न करना जाए। महला तीजा होर कूड़ पढ़ना कूड़ बोलना माया नाल प्यार, नानक विन नामे को थिर नहीं पढ़ पढ़ हुए खुवार। पौड़ी हर की वडियाई वड्डी हर कीर्तन हर का, हर की वडियाई वड्डी है जा न्याओ है धर्म का। हर की वडियाई वड्डी है जा सफल है जी का, हर की वडियाई वड्डी है जा ना सुनिए कह चुगल का। हर की वडियाई वड्डी है अपुछया दान देव का। सलोक महला तीजा हों हों करती सामुई, थंपो किसे न नाल दूजे पाए दुख पाया सब जो ही जमकाल। नानक गुरमुख उबरे साचा नाम समाल। महला पहला गली असी चंगिया आचारी बुरिया, मनुख सुदा कालियां बाहर चिटिया। रीसा करे तनाड़ियां जो सेवे दर खड़ियां, नाल खसमे रतियां माने सुख रलियां। होंदे तान नतानियां रहे निमानियां, नानक जन्म सखारता जे तिनके संग मिले। पौड़ी
ਤੂੰ ਆਪੇ ਜਲ ਮੀਨਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਆਪੇ ਹੀ ਅਬਜਾਲ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਜਲ ਵਤੈਂਦਾ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਸਿਬਾਲ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਮਲ ਅਲਪਤ ਹੈ ਜੇ ਹੱਥਾਂ